0: देखो आ गई अचानक से दे जोड़ी जा तू गमे ता जो रखे पे याने ना रोगा ता पूरी
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
2: இங்க இருக்கிற பூவெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு உஞ்ஞாபகமாவே இருக்கு. இந்த லெட்டர் உனக்கு ஒரு வித்தியாசமான லெட்டராகவே இருக்கும். பின்குறிப்பு: தம்பி ராமகிருஷ்ணா, கூச்சப்படாம மற்றவர்களையும் படித்து காட்டவும்.